0: कि एक समय तानो बने दे बाहर मुझे माता से रिता थीं पर नो नहीं बोले अफेयर तक हुआ था साउदी बाहर कुंडल से नहीं मैं पूजा बत्ती में पिसन
1: Ovintis, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung ngalor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: की क्षमता में बने दे बाहर जो माता से रहता थे फल नो नियो बोले अफेक्ट जो बता साउदी बाकुम्बा से नो पूजा बत्ती ने पिसन
1: Ovintis, ne maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.